0: श्री गुरु हरगोबिंद ने अपने पिता दे दिते हुक्म नूं पालन करन दा वादा कीता अते अखीर ओह आप वी बादशाह दा सामना करन लाहौर गए। जाण तो पहला उन्होंने सब नूं आदेश दिता सी कि उन्हां दे वड्डे जिवें कि उन्हां दे माता जी, माता गंगा जी अते बाबा बुढ़ा जी दा कीहा ही मानना है। इस दे उपरांत गुरु जी आप ही किले विच बंदी बना ले गए। भावें यह उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार ही होण दिता सी जिवें कि तुसी बंदी छोड़ दी साखी तो जानते हो।
1: भाई जेठा
0: ते भाई पिराना दोबारा रोह विच आ गए।
2: जहांगीर सम्राट ने यह सोच भी किवें लिया कि वह गुरु जी नूं बंदी बना लवेगा।
3: असी यह गुरु दा अपमान बिल्कुल नहीं होण दे सकते, हुण बहुत हो गया।
2: साडे कोल इन्नी शक्ति है कि असी इस सम्राट नूं आप ही सजा दे सकते हाँ।
3: पर असी जानते हाँ कि गुरु साहिब साडी शक्ति नूं इस्तेमाल करन दी मनाही ही करनगे।
0: उस समय अमृतसर तो बाबा बुढ़ा जी गुरु जी दे माता जी पासो एक फरमान लेके आए।
4: अपनी शक्ति दे अधीन तुसी जो भी कर सकते हो करो, अते मेरे पुत्तर नूं जल्दी तो जल्दी वापस अमृतसर पहुंचा दियो।
3: जे माता जी कहंदे हन कि असी अपनी शक्ति नाल कुछ भी कर सकते हाँ ते
2: तां चलो असी भी फिर शेर बन के दिखाउंदे हाँ। चलो मेरे नाल।
3: जे तुहानू यह ठीक लगता है ते मैं तैयार हाँ।
2: असी उसका खात्मा कर देंगे। गुरु जी जल्द तो जल्द कैद विचों छुटने चाहिए हन।
0: भाई जेठे ने अपने नाल पिराने नूं ले लिया। दोनों ने भयानक शेर का रूप धारण कर लिया।
5: हुण ए है ना ओ गल जिस बारे मैं कह रहा हां।
0: अगे बादशाह दिल्ली विच एक विशाल किले विच रह रहा सी। सो उस रात ओ शेर दे रूप विच तब्दील हो गए। ओ दो भयानक शेर शाही सोन वाले कमरे विच दाखिल हो गए।
6: नहीं, मेरा अंत आ गया है।
0: बादशाह मदद ले कुरलाया अते गुरु जी ने उसनू शेरा तो बचा लिया। अगले दिन उन्होंने फिर शेर का रूप धारण कर लिया अते बादशाह नू डराया।
6: ए शेर असली हन, पर मेरे पलंग दे हेठा किवें आ जांदे हन अते फिर इकदम गायब भी किवें हो जांदे हन।
0: उस दे मंत्रियां ने बिल्कुल इस गल दा विश्वास ना कीता कि ये असली शेर सन। उन्हां नूं लग्या कि ये बीमार है, तां उन्होंने बहुत वैदा हकीमां नूं सदिया ताकि वो ठीक हो जाए, पर कोई मदद ना हुई।
1: तां भाई जेठा
0: वैद दा पेश बनाया अते आप जाके सम्राट नूं मिले।
6: कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकिया, मेरे रोग नूं कोई ना दस सकिया। देखते हैं जे तुसी दस सको।
2: असल विच तुसी बीमार नहीं हो, मैं जानदा हाँ तुहाडे नाल की हो रहा है। रात वेले दो शेर आउंदे हन ते तुहाडे दोवें पासे आके बैठ जांदे हन।
6: तुहानू इस बारे कीवें पता लग्या?
2: मैं एक बहुत वड्डे गुरु दा शागिर्द हाँ, मैनू बहुत कुछ पता है। मैनू ए भी पता है जदों तुसी परेशानी विच हुंदे हो तां तुहानू गुरु हरगोबिंद साहिब बचा लेंदे हन, नहीं तां शेरां ने हुण तक तुहानू मार देना सी।
6: वाह, तुहानू ते सच दा पता है। मैं ऐसा की करां जो मेरी मौत ना आए?
2: तुसी गुरु हरगोबिंद साहिब नू बहुत चिरदा अपने कैद विच रख्या है। जितना तुसी पहला तय कीता सी उस तो किते वध समा हो गया है। तुसी गुरु नू झूठ बोलिया है, तां करके ही शेर तुहाडी जान दे दुश्मन बने हुए हन। तुहानू उन्हां नू जल्द तो जल्द रिहा कर देना चाहिदा है। तुहानू गुरु पास जाके उन्हां अगे सीस निवा के